हरौत हाकोतरो नेशनल गार्ल्स चाइल्ड डे एबखेबा हानि बुसारावनि जेराय बुसा बुरि बुसारावनि साल हेने पालाय जागै दङ जानुवारि तालनि 24th साल मारिबो 24 साल मारिबो 2008 बिसिनि सिमि बुरि बुसारावनि तंखानि केबो मुं मुंसा गोरै अंनानि दै खेलायै दै बुरि बुसारावनि जामुं निउट्रिसन गाहाम मानानि बागै दै बुरि बुसारावनि जे 18 इयार्सनि सिगांनो जे काय बरि रिजाकमानि बुरि रगन परिरिया खालायजाकमानि दै बुरि बुसारावनि

0: Eu acho que já a hotel estava com aqueles outros que estavam com ele. Estava levando um posto, eu não sei se ela. Pelo amor de Deus, eu não sei se ela era do carro. Tá bom? Sabe, quer que eu me diga como é que eu vou ter um ódio de carbono no copo? Ah, não tem que ter um vídeo. Então, passa o que é que a gente está ganhando aqui, então, a gente não vai ter que ter um vídeo de carbono.
1: जों सिनि बोरैबो सारक न जों फियाबा जों गोबां बरक न आगे जरा कायसो फियाबा पुइला बखागो जों नुगो जों सिनि पुइला बखागो सिनि हिस्टरी एबा खलायबा सिनि जे धर्म ग्रन्थ एबा खबा तंखानि जे कक साजाक दङ आरो सिफियाबा जों नुगो जे बुरि रोगनि बिसखांखौ आखला फियाबा गोजार माजारो बुरि रोगनो तलाव सुखलोग जाखमानि नुखा दाबो फियाबा हायनहाय बुरि रोग साखाव गासावै दङ हेलो
2: द पर्सन यु आर
1: दाहोय बाबु खुक आबुनो सानानि मुचुङो बुरिबो सारोगनि तिनिनि अ सालो बुरिबो सारोग न चों देखायसो भाइजोंबो नायदोसे बुमा हिन्जावनाय र' जों जेलाबो सारक नगो माइमै संनो नांगानि बागै गायजोबबायमानि यागुल' फानो बोरै जेलाबो सारक न' जों हायार डिग्रि खालायो सार्भिस न' जे इन सार्भिस दंनाय र' बंरावनि पुस्ट न' आपग्रेड खालायो मानो फियाबा बोरैबो सारक नग न'खौ नायखलना थांथानि अबहाय खालायो फियाबा कालबारिनि बा गायजोबमानि यागुल' बैसाबोथै उमानि यागुल' हायार डिग्रि नाहारै मानिया अबहाय सों नुगु हेलो
2: द पर्सन यु आर स्पीकिं
1: अबनो जों सानानि मुचुङो जे दाबु फानो जिनि बुरैबो सारक गामि आमसाय रगो दंखो जे ककदों नायनायग्रा ना हेलो हायनाहाय जय थाङो ककरै बुरि गामि आमसाय रगो जों नुगो बुरैबो सारक न' नग न' खुंनायखल जागो बा रों नग हाक्सालनि बागै बरक न' नायजायगिया अबहाय र' हेदिबा ना बरक न' जों नुगो जे बरकनि जे बुरैबो सारक न' जों रों नग रगो थांथानि बरकनि गेबें मुं नुगजागमा र' हेदिबा हेलो हेलो
3: हेलो
1: ताखुनो लामसोगो फुंखा
3: फुंखा मुखु तिनि नि कर्पिस

0: बुरीबो सारंनि सार बुरीबो सारंनि सार
1: बेलायखैनो हामबाय बुक्ताखौनो औ औ अबहायनो सिनि साख बायथां जों बुमा हिन्जांनाय रब जों जेफ्रु गायजौ जिनियावबो जेफ्रु जोरायबोसा बुरैबोसा आजायो जों जायद' गैया केवल केवल नखंग' नगो जे ब बुरै दामो खालामो माननाय फियाबा ब बोसखांनि लामा न' फियोगै रिनानै जायद' गैया बोसखां लामा फारै रिनानै जायद' गैया बसाजो आंहाय नगो आसुगै दंनानै दानांथुन ब थाङै रोंनगो रोंसिरोंथुन बोसखाङो आ थांथन होनो दामिहिगे ब साखबाय थानो केबेल वान समा हायन' बिनबो साजोग नब केबेल वान सौनानै जेङै थाङो जत' बुमा रंन' दिनै न' सालो अबुनो कयनानै मुजुंगो नों सेबमानलिया उंगै नगमा आसुग फान' निनिबो सान' नगो आसुगैबै दनिनानै दा जायदोगि निनबो सानि लामा न' हगै लामा सोनामै रिदि लामायाव केबें मुं दंनाय बुसु दंनाय हलं दंनाय आबोनो नरै फारै रिनानै सामु बुमानि सामु बुफानि सामु नख नखुनि बर' रगनि सामु गामि आमजायनि बर' रगनि सामु जों जेफ्रु जिनि जिनि अस्मिता जे जोंनाव गल्ड मेडेल भारत हाखतनरि रिफेका बिनि जेफ्रु ब लामा हिमनानि जेंग आफ्रु केब वानसुगै माया ब मेडेल नाहारि फैयानो हिनि हाया दे फियाबा ब मेडेल नाहारै फुनुगै रिखा आव बुरैब मानो हिनि बिनि आमचैनि बर' रग्न यासि सुरै फुनुगै रिखा जुनो यासि सुरै फुनुगै रिखा नरग जेसुबानो कासुदि आं नरग्न नरनि हामखरायनि बागै नरगनि बुमुंनि बागै आं हर साल जायदुगै दिनै नरग्न नरगनि सकात नरि फायो हिनि बोरैबो एरेन्टनिया बोरैबो साय हिनै खिबि जांनाया जोंबो जोलारो बैबाक्सान मानो बोरैबो साबो दुमुं नरग सेबरेखे जों नों आं जत्त' बोरैबो सारग्न सेबरेखेनखे जोंबो हायनो मानो दाखोबोगौ मानेखि जों ककदग फायजाग फियाबा ककदग दाबो खजाखायखे जोंनि हायुंनि खरां निजरा बायै थानाय आबोनि बागै नरकनि अ ककदग न' खसाय मांगला दाखग एबा बुखुख नाकार मुं सानो जे नरकनि ककदग न' अजराबो खसाय मानियावै दंखा हायुंनि खरांनि यागुल' हायनो हाय गिफलै नरं गोजारो नरकनि ककदग दै गोरोंनानै जायदगनाय

जिनि भारत हादरनि बेलेखैनो थमल' गोरों बरम गोनां अमिताभ बच्चननि आसाइमानि साल अब पालायजाबाय दं दे भारत रत्न हिनै सागलायजाक बलखैनो तंथार सबनाय दे पलिटिसियान नानाजि देशमुखनिबो आसाइमानि साल हिनै साजागै दं दे तिनि जिनि विश्वकोश पुननि सैनाय पैला नगेन्द्र नाथ बसुनि थैमानि साल हिनिबो पालायजागै दं तिनिनि अ साल 1737 बिसिबो वेस्ट बेंगल एबाखाबा कलकाताबो बांला फाइमाबाय दैनबार कतर फाइमतानि साय साय बर' रगनि लांमा चमानि नुगजाखा हाइके आसु जरान रग खोनाबायखा तिनिनि सालन रोगसावै कक थाइजाथायनि दाबक थांलायानो जों साब खामग्रायो तिनि रगन सायखनारिनाय पेनक्रियाटाइटिस नतुयै अम कायसा बहगनि बेमार जिनि बहगो गोबांमा मानै एबा खैबा अर्गान दङ अबरगनि जतनिनो कायसा कायसा सामगबो दङ अमहायनो कायसा अर्गान पेनक्रियास हिनै दङ जों अबनो बखल' हिनैबो रमैनो हारमानो अबनि सामगखा माइ हजम खालायथानि चुबानानै दै थैनि गोदैनो साखिनानै जेफोरबो बिनि सामं खालायै मानियांग' आफ्रुनो जों बहाव रग साजागै मानो एबा जों बहाव रग देराजागै साख देराजागै मानो आफ्रुरग' जों हस्पिटाल लग' जों एबा खोबा साख नायखलनाय रगनि थानै जों थानानै नाव फियाबा अम गोबांखौ खालाय साजाग' जेबर' रग हखौ नंग' जे बर' रग चुवाग रग नंग' बर' अबहाय गोबांखौ खालायै उंगहिनै साजागै दङ फियाबा अ कक जाया तामहिंगे दाबुंनि बर' रगनि जे लाइफ स्टाइल आथानि फियाबा जवाख बिरि अबहाय खालायै फेगजांनाय मानै जायावैनो अबहाय बेमार मानजागै दं माने जे बर' रग थक गोबां जाओ जे बर' रग मुहान गोबां जाओ अ बर' रगनि बिसिंग' अबहाय बेमार नुजागै मानो रमनि मुहान जायाबो फियाबा थक गोबां जाओ अ बर'निबो उंगै मानो अ बेमार कायनै दङ कायसे एक्युट पेनक्रियाटाइटिस दा कायसे क्रनिक पेनक्रियाटाइटिस हिनिबो दङ अबनि सिमटम अ बेमार उखायगै जों बबहाय खालाय सायमानै पेनक्रियाटाइटिस उंहिनै बहग साखा फाइसिंग' साबो जों वैसे वैसे फियाबा दगथुल' एबा बहग साखा रग' साखायै जों गेसनि बागै अंगरखिनि वानसुगो फियाबा आबुनो जों स्राय स्राय खालायै खेल खालायनानै नांथाय दे साग हामग्राय बा साग नायगलनाय रगनि थानै जों थानानै नांगौ आबुनि बागैनो जोंनि टाङै बहग सा दे बहग सामानि लगि कलम्ब' फायनाय लुमानिबो नुजानाय दे बोखा गोलैमा रगबो नुजाबनाय दे बहग सागा फाइसिंग' सानाय फियाबा बहग तला फाइसिंग' हिंगे कलम दै घाम रगबो नुजाबनाय अबहाय खालायगेंगे नरग रमैनो हारमानो अब पेनक्रियाटाइटिस सुखनायनै वायसेवैसो जों गोबांमा बर' रगनो नुगौ जों आसामसा बहग सावै जों साखाम नगर रग थांमानि नुगौ फियाबा आरो थांगै इन्जेकसननि रिमानियागुलनो लामा सौयै थांगारग हिनै फियाबा गेस रगनि बागैबो ओंखारखै जों नुजागौ साखाम नगर थांनायगे फैला जों अबहाय बहग सावै थांगायगे गेसनि इन्जेकसन रग रिमानि फियाबा जों साग नायगलनाय रगनो कक सिलसाव फियाबा अब कक सिलसा थायगेरै अबहाय जे निनि बिसिंग' बेमार कतर उंजाग आथानि फियाबा बरग नुनो जरारिया उमानि बिसिंगसे अबहाय खालायै लामा रग जमानि नुजागौ हायगे जों अ बेमार उंखायगे जों साग थानानै नांनाय थकनि मानै जायादै खालायै जों रुगजाग मानै पैला बोखाग' जाया मा सानानै नांनाय द्रिग द्रिग खालायै जों गिजिसा मस्ला गोनां मानै जावै मानो उल' फियाबा मस्लाते थक जाया दंखायगे अ बेमार स्राय स्राय खालायै हायनो हाय हामै थांमानिबो नुजावो हायगे थाखोबो गुमारिगे जों आसु जरा जों गिजिसा खोनालायगे साग हामगोन।

पकमा बार जामानजाक बरोरकनि सामुंख्लाइथानि शाक नायजोंना नाङै टंखा अबहाय शाक हामया बरोरकनि शाका ओ माना ख्लाइमुंग्रायदारक बजाक टंग्लाक अदा गिमुं खानाया बरोरकनो भारतीय न्याय संहिता 2023 नि 223 धारानि केरं रायदातै शास्त्रि जाखनाय शाकलाइजाक आमचानि बरोरकनो अदा गिमुं रकनो खोनानानि बागै कयजाखा हाइके जों आसुक जरा खोनालायखा दिनैनि ककथम रक

0: हेलो हेलो हेलो हेलो
1: आप जिस व्यक्ति से बात कर
0: वाइन वाइट हम साइ तो मनी अगलो हाई नो हाई ओ हाई मोई थो को करे हायो नि खरंग नि अगलो अजरव जों सालकामा पांदाव हाई नो हाई किफिलका फा सालकामा पांदाव चिनी जों तिनी सालाय दङ चिनी बुरि बुसारक नि साल बुरि बुसारक न ति हेलो
1: Please stay on.
0: औ दा हबो मारे कि सिं हेलो हेलो दाखोनो लाम सुखो फुंक हां दाखो आंनि खरां खोनावै दङ हेलो फुंक हां लाम सुखो सिं दिदिनि सालकामा पान्दाव साबो सावरि दं दाखो দেখো কে বিষয় না বেলা কিনে লাম সব চিন্তি নি পান্দাও ও নিন খরাং পাইয়া পাসাইয়া তো কক্রি আবু তো কিছু মিশা অবহাই তো উংলাই না হ্যাঁ আও খানাকা খানাকা খানাকা হুম

उनुक जाके लामा वो जो तो थांगलाई शो खाइनाई ते बेरायनाय रोकनो अचु बानानि बागै प्रिपेड टैक्सि ते अटो रिक्सा चालकनाय रोकनो बकबखा बिस्कां सालचि थामनि सिमि सालस्नि अक्टोबर आगरतलानि दशर देव स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स भारतनि सेंक्राक अग्निबीर आचुक थायो चिटकना बागै रेली संजा जागोन सालबार रमै चलिनाय ओ रेलिनि बिसिंतै अग्निबीर आचुक थायनि बागै जत सामंबोतां पायेनो मिया भारतनि सेंक्राक बाहिनिनि खुफां साखा सालब्रुम न आइचुक दामबानि सिमि ओ सामंबोतां इंगानो हास्तिनि सिक्ला रग्न ओ रेली ओ गोरोंनानि बागै कपक जाखा देरामुंका खरां देरामुंका सुनानि बागै असा गायनाय रग्नतै हास्ते गोनाङै हजाक मुंनि पान्दा ख्लायनानै हास्ते केरं चुबानाय मथानि बोखाखदै मथानि तांकरा बेद प्रतिम देवर्मा मिया शाखा एक्जिक्यूटिव चेयरमैन केरं करं डॉक्टर टी अमरनाथ गौरनी दागि मुंबाई जतन तंथकनाते काहाम तंथुन अ ककबु बाकनतै न हजाक मुं बांनानै वानसुक मुं नाहार जाखा त्रिपुराते हायद्राबादनि बिसिं रंजित ट्रफिनि सालब्रैनि थोंमुंगौ तिनि निसिमि ओंगानो हायद्राबादनि जिम खाना थोंखलाव अ थोंमुं ओंगानो मणिशंकर मुरासिंनि दैफांबाय हास्ते बदल अ बादायमुंगौ थोंगानो नबार तैबार नायखंनि बोखाखदै साजाखा तिनि नखा किसासों मोनाजाग दंगानो हास्तेनि किसासों थायरगो फेरांगगै वाथै वायमानो तिनि साखानि तुंमारि दंगानो 33 डिग्रि सेल्सियासनि गानागिनि आइचुगो तुंमारि दंखा 23 डिग्रि सेल्सियास ককটুমা তাবুনি বাগে অরণ্য পাইখ্যা উল্লি ককটুমা আওয়াই এঙ্গানে তিনি হরনি দামসিনি সতী ব্রেচি বাওয়া।

आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू लॉन्च डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ ओवर 13,000 करोड़ रुपीज इन चेन्नई, तमिलनाडु दिस आफ्टरनून।

फैदिगाव जरासंग तीन कब्रक निज हेडलैंस नायन मंत्री बखन नरेंद्र मोदी तीन पुना माली टाइप बदापाली विशिंगी ब्री दशमिक बा किलोमीटर कलक मेट्रो रेल लाइसुमुंगन चेंगीरेना निबागी चेन्नई थांगाना मंत्रीग्रा प्रफेसर डाक्टर मानिक शाह शाखा हास्टे हापांग हास्टे गनांगे ट्राफिक बेक्रेप नई बजाय जाय खिलाई चेतन नाहरखा रेकामुंग मंत्री सुशांत चौधरी शाखा रेकामुंगनी सेबसाब नई बक हामग्राय खिलाई मामबाई बाक्सा बेरायनाय नायरकनी मत

अमर देव थांगे बिनि सामगो सुन थांगे बसानाय अक भगवान सुखाता बबिनि लामानि बुसंगे बसावै राजानि आसुक थाय बा सिंहासन आबोफन सेगै मानो ते बुबागरा कसामनि बसंग संजाफिरान अक ग्रक ब वानसु गाना मारि वय वानसुक सिनि वानसुगै रनागन नारायण अमर देवन राजा खर फाइनानी कसारी रिहरू अमर देव सिपाही तंखर या कर राजा खरु दईपुर फाइमा बै बाक्सान बन काहमकाय लामजाक सक्का सालसा रनागन बन हर निचा मुंगसानी कसार चुआक माइखाम चार वही खानी रनागन बन बुठानी बेखा चंखा आमुनी बागै ब बुथानै बसंगै तनिखा बाहेके अमरदेवन बुथानानि आ कग्रग बखावसंगै अबतै तमुंग रफियाबा अमरदेव सेकांबरिया मुंसाबन साहरि मानिया गजा थानियोसिब बरनि तमुंग जामुंग नुगै आसमसा बखा मिथिंना नांगो माइ जाथायनग हाफमा जराव ब बिकिसिं खरक्सन नुहुर जागौ बिनि खाजानि बिकिसिं आबो आबो अप्तै सायारंन सकांगबारियान सावै मानखा ककंखा अमरदेवन बुथानानि जे वाराय चकमानि बा खैदुक थनमानि आ कग्र ब सकांगबारिया काहामकेन रमै मानखा सावैबो मानखा आबायन ब अमरन मकल फिलिगिरिखा ते फाथै बकं यागर रमै सेंबाय ग्रोख सातान सुवै फुनुहरका ककंखा बन जे रनागन सं बुथाना नायी तंगो आ बुथाना नायमिनि कग्न ब बुखुबाय तो पेप्लाय मानलिया तांगै हा बुखुबाय पेप्लाखै तो जे रनागन सावि मानथान आबैन ब तालखाय फुनुगै याक बैसिमि तालखाय फुनुगै फाते बं तानसुइ फुनु कथा बन मदिखे बुथाना नाय आफ्रो बिगिसिंग न बुखुबाय थां मुंसासक कफन छाना लामा तो करीबले मानजा गया फियाबा अमरदेव ब किसानी करें गया बुझी करें रमीमान करें बब आशेक बैन बेबाक तम हामिया गर आकर फ्लांग फ्लांग खलाये रमी खिबिगा बन रनागन तामु खलाइनानी नाय तामु खलाइनान बगी कसार आम ब कहमगान रमखा ब रमीमान खा बन सक बन सें कलक माबाय चलै बुथारी खिबिनानी कक जाबजाखा ते आपतिखेन सामंग बयाक रिजागै तंखा अकग्र काहमकैन रविमांखाता आ जराव अमर किरिजागै साथि गारजाखा बसाक बथराय थाइजाखा रसर रसखाय बुखुम बुखुम बसाजाखा किरिजागै आबैन ब स्राफजानि बिसिंग साग हामिया बेमार मानजांमोनि कक सनामै साका बन सावै आरोनि खारै ददरसा कंका दसि दफ्रा सिपाही तंखर थाङै पायो बतै आरो तंखाय बिनि हामियांगन अक वानसुगै बआफुरु ककेरां सङै बहक दारामानि कक बरंन साव बहक दारामानि बागै खिथाय नग थांनानि कक ब रनागन नारायणनि थानि सावै आरोनि साग फारै थांनानि ब नायजाखा ब साका आनि त बहक दारुइ तङ आं ताबु खिथाय नगसे माथा नाय आं ताबु माइचाय मानजाग्रायाखौ अक खनाय रनागन बन बिनि खिथाय नग थांनानि कक साफान बाब गसिलिया बतामगि रनागन खिथाय नग थांगाय बस बुथारजों नायब्ले आमनि बाङैन फातार फायब बिनि कराय मानफैलिया फातार फायब ब बिनि कराय मानफैलिया आबैन थं थं बजाउ तंजा कायस्थ खरक्सानि कराय नुगै बआ करायन फाचा गसै पैखा कायस्थ खरक्स बाफ्रु आरो फाइमानि बिनि करायाफ्रु आरो थं थं बजाजा दंमाता आमो नुगैन ब जासापा नंथन उंग्रा सिथन नै ओ कायस्थनि करायन नुगैन आरो कासै ब खारनानि लाम रेखाता कायस्थसा पुइला सकां करायसि रिनानि गसे ग्रालिया कसो राख राख तंगी दंखा आमने ब फानकड़ा कराई सेगैत लांगनानी नांखा नगो किफी

बलेक ना तो तौर चामोंग चिंग अजराव खने पाख्या सिनी हानु लोप सजाग रिचामोंग ताको अधिरास तेबरवानी खोक तेके चिंग बलाई नांकुक मानी याखबा बलेक ना तो तौर चामोंग खना कहने मानो चिंग जोरा जोरा रोको अमनो मावान छोगो सिनी हापार नो सिनी तंखर नो सिनी कानमो

दोस्तों, सबसे पहले तो शुक्रिया सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का, जिन्होंने हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज ये शानदार पार्टी दी है। थैंक्स अ लॉट, वी मिस यू। हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है और मैं जानता हूं कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

को गिफ्ट की खुशी लाखों में एक बरसे वही तुम पे तो खामोश ना बेबसे बस प्यार होने को कुछ दिन के तलाश को जो उन दिनों से खास खास तुमसे प्यार हो बातों में

0: まで頼むのか。頼まなかったんで。
1: 에이반찬이구마찬이맛있어굳세디뭐라당다가이타가당통마이찰랑이하이찰랑이야
2: 너하타이두간들리야니나코쿠부디야
1: 땡리바리야바홀롱아나찬이다붕마이찰랑이굳세디스니부사스이부스라보세안에두간바퀴랑이렇게땀칼만이잡아앙
3: ये आकाशवाणी है विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 25वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा आर्थिक सुधार एक नई व्यवस्था की ओर। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी और अनिल पद्मनाभन। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
4: श्रोताओं आप जन सेवा से देश सेवा श्रृंखला सुन रहे हैं। आज चर्चा का विषय है आर्थिक सुधार एक नई व्यवस्था की ओर और आज हमारे साथ दो आर्थिक विश्लेषक प्रोग्राम में शामिल हैं शुभमोय भट्टाचार्य जी और अनिल पद्मनाभन। शुभमोय अनिल आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में।
5: बहुत धन्यवाद यहाँ पे बुलाने के लिए।
6: धन्यवाद सोनू जी।
4: अनिल जी आपसे शुरुआत करते हैं, ये जो 12 वर्ष गए हैं इसमें जिस तरह का आर्थिक सुधार हुआ है, खासकर करों की अगर हम बात करें, जो अप्रत्यक्ष करों में जिस तरह के कहें कि रेवोल्यूशनरी एक बदलाव आया है, उसके बारे में आप हमें बता सकते हैं कि जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 2017 में आया उसे आप कितना मील का पत्थर मानते हैं?
6: हमें अगर इसको समझना है जो सुधार आर्थिक व्यवस्था में किया है सरकार ने, तो आपको 1991 जाना पड़ेगा, जबकि जो हमने रिफॉर्म्स देश ने रिफॉर्म्स अंडरटेक किए उस वक्त, तो वो था उसका मुद्दा था कि भारत सरकार क्या करेगा क्या नहीं करेगा। बड़ा इसमें जो एग्जांपल था वो था डीलाइसेंसिंग, वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को एग्जिट करना था काफी सेक्टर से। अब आप फास्ट फॉरवर्ड कीजिए, जो पिछले 12 साल में जो किए हैं, ये सबसे बड़ा डिफरेंस इसमें है कि ये नया जनरेशन रिफॉर्म्स जो है इन्होंने सरकार का फंक्शनिंग ही बदल दिया। तो पहला था कि सरकार क्या करेगा, अब सरकार कैसे फंक्शन करेगा, वो ही है फंडामेंटल डिफरेंस। तो उसमें जो जीएसटी है एक बहुत बड़ा उदाहरण है इसका, कि ये एक टैक्स था जीएसटी, जब मतलब 2001 से इस पे चर्चा चल रहा है उससे पहले से, लेकिन किसी सरकार ने इसको कभी इम्प्लीमेंट करने का मतलब राजनीतिक साहस नहीं दिखाया और एक राजनीतिक कंसेंसस नहीं जुटाया। इसमें अरुण जेटली जी को मतलब याद करना चाहिए, वो स्वर्गीय अरुण जेटली जी, उन्होंने एक इसको एक एंकर किया, एक लीडरशिप किया। और इस टैक्स में जो सबसे बड़ा मतलब जो एक लिसनर जो समझ सकता है बड़ी आसानी से, ये इन्होंने देश को एक आर्थिक लेवल पे यूनिफाई कर दिया, एक इकोनॉमिक एंटिटी यूनिटी बना दिया। पहले था देश में क्योंकि अलग अलग कर के व्यवस्था थे, तो हर स्टेट का एक अलग होता था, तो 38 सॉवरेन टेरिटरी से सामानों को जाना पड़ता, तो आप सोचिए कितना फ्रिक्शन होता था, कितना इनएफिशिएंसी होता था लॉजिस्टिक्स, मतलब आप तमाम चीजों में देखते हैं अड़चन कैसे। तो इन्होंने 17 मेजर सेंट्रल और स्टेट टैक्स और 13 सेस को एक करके जीएसटी बनाया। तो ये मतलब देश का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को दोनों को अगर मिलाएं, और इसका अभी हमें फल साफ नजर आ रहा है। अब जीएसटी रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं, फॉर्मलाइजेशन बढ़ रहा है, हर तरीके से ट्रांसपेरेंसी आ रहा है सिस्टम में। तो ये जीएसटी जो है भारत का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म है पोस्ट इंडिपेंडेंस।
4: जी शुभमय आपके पास आते हैं और इस पर ही आपकी भी हम प्रतिक्रिया चाहेंगे, क्योंकि एक बहुत ही कहें कि क्रांतिकारी रिफॉर्म है। जैसा अनिल ने बताया कि नेशनल मार्केट बनी है, फॉर्मलाइज हुई है इकोनॉमी, आप बताएं कि जीएसटी क्यों आपके अनुसार एज एन एक्सपर्ट आपको क्या लगता है इतने सालों से लंबित क्यों था, और अब जो जिस तरह से इसको उठाया गया और शुरू में जिस तरह की कुछ कहें कि एक भावना थी कि ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, कैसे आप देखते हैं इसकी जर्नी?
5: मैं काफी गौर से सुन रहा था अनिल जी के काफी भावनात्मक जो विचार थे
4: जी।
5: और मैं उससे कहीं बहुत बहुत तरीके से मैं उससे सहमत हूँ। जीएसटी अनिल जी जो बता रहे थे उसी कड़ी में अगर चलते हुए हम देखें तो भारत में 2014 से चलते हुए अभी तक की जो श्रृंखला है उसमें अगर आप देखें तो सबसे बड़ा जो सुधार का कार्यक्रम हुआ है वो है कैपिटल, लेबर, लैंड और कैपिटल, इन तीनों में अगर हम बांटे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो इनमें कैपिटल में सबसे ज्यादा

0: सुधार की मात्रा आई है, और ये इसीलिए इसमें अगर हम देखें जीएसटी को, तो जीएसटी अकेला ही नहीं है, जीएसटी के साथ अगर आप एक और बहुत जिसे कहते हैं महत्वपूर्ण बदलाव जो लाया गया वो है बैंक्रप्सी बिल, इंडियन इंसॉल्वेंसी बोर्ड ऑफ बैंक्रप्सी इन इंडिया। ये बहुत बड़ा एक बदलाव था, एक तरफ कैपिटल तैयार करना, दूसरी तरफ कैपिटल जो बदलाव आएगा बैंकिंग क्षेत्र में सुधार लाने के लिए, ये दोनों मिलकर एक बहुत महत्वपूर्ण पदक्षेप थे। क्यों? क्योंकि इससे क्या हुआ कि सरकार लोगों के पास जो सीमित कैपिटल अवेलेबल है, संसाधन अवेलेबल है, वो मुआयना कर रहे थे, वो चीज पहले संभव नहीं था। अभी क्या हुआ कि जीएसटी और IBBI दोनों एक साथ में, एक तरफ तो लोगों के लिए सुविधा हो गया कि भाई हम अगर हमारी कोई बिजनेस चलते हुए बिजनेस में कोई अड़चने आ गई, कोई बिजनेस को बंद करने की जरूरत पड़ी, तो वो एक सिर्फ रोजमर्रा का इंपेयरमेंट ऑफ कैपिटल के हिसाब से देखा जाएगा और उससे मैं जल्दी से उससे निपट के मैं आगे का प्रक्रिया शुरू कर सकता हूँ। और आप देखें स्टार्टअप्स की हमारी इतनी जो तादाद बनी है वो इसी भरोसे पे बनी है कि स्टार्टअप में अगर चलते हुए किसी जगह पे स्टार्टअप नहीं चला, और होता ही है
1: जी,
0: तो वो अचानक लिक्विडेशन वगैरह में उनको कोई अड़चने नहीं आता है। ये बहुत बड़ा
1: जी
0: मील का पत्थर है जो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। साथ में अगर हम जीएसटी की बात करें तो वो उसी श्रृंखला में कि टैक्स स्टार्टअप्स के लिए बहुत ही सरल सुविधाजनक सिस्टम बन गया है। भारत में अगर हम बहुत सारे जो इसके बाद के जो बदलाव आए हैं वो बदलाव इन दोनों से जुड़े हुए हैं कि इन दोनों को एक बेस बनाकर फिर आगे लोगों को भरोसा आया है, रुचि आया है कि भाई वो कैपिटल लेकर कोई नया बिजनेस, कोई नए संभावनाओं के ऊपर आगे बढ़ सकते हैं।
1: जी,
0: जहां तक आपके सवाल थे कि ये क्यों नहीं बना का सबसे बड़ा चीज था मंशा, और उसका वजह यह है कि हम जीएसटी किस पे ला रहे थे। जीएसटी एक कड़ी में है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये कड़ी के अंतर्गत होके आया और तभी जाके जीएसटी बना। 2017 में ये जीएसटी का प्रक्रिया शुरू हुआ, और जैसे आप देखें कि सालों साल चलते हुए वो जीएसटी एक एक करके उसमें जो अड़चने थे वो सिंप्लीफाई किए गए, तो उसमें भी जैसे हर साल में जो मीटिंग होता है, और अगर वो जो मीटिंग शुरुआत में हुए थे कई सारे मीटिंग्स करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीजें थे, चुनिंदा सवाल थे जिनको हल करना सारे राज्यों को मिलके और केंद्र के साथ मिलके तो उसका निपटाना जरूरी था। तो इसलिए ये किसी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का भी एक बहुत बड़ा एक माइलस्टोन मान सकते हैं।
1: जी,
2: डायरेक्ट टैक्स सिस्टम में भी बहुत बड़ा रिफॉर्म हुआ है। 12 लाख रुपए तक की इनकम पर जीरो टैक्स एक ऐसा कदम रहा जिसके बारे में एक दशक पहले तक सोचना भी असंभव था।
1: हम देख रहे हैं हर महीने जब जीएसटी कलेक्शन की फिगर्स आती हैं तो बहुत रोबस्ट आती हैं, उसमें भी अच्छी खासी ग्रोथ है। सो आपको लगता है कि अब जैसा आप कह रहे हैं कि एक कोलैबोरेटिव अप्रोच है सरकार का, तो लोग टैक्स इवेजन से भी अब बच रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा उसमें टैक्सेस पे करने में वो अपने आप को एक तरह से कह रहे हैं कोऑपरेशन का एक भावना से टैक्सेस टैक्स सिस्टम में शामिल हो रहे हैं।
3: बिल्कुल सोनू, आपने सही मुद्दा पकड़ा है। मैं आपको भारत के आर्थिक इतिहास में बहुत साल पहले ले जाता हूँ। 1960-1970 में इनकम टैक्स जो होता था 90% के ऊपर होता था, आई थिंक 97% होता था। तो आप खुद ही सोचिए, जो इंसेंटिव था टैक्स इवेजन था, टैक्स अवॉइडेंस नहीं था। उसमें ये दो शब्दों में बहुत बड़ा फर्क है। इवेजन में मतलब आप टैक्स पे करना नहीं चाहते, आप छुपा के आप इनकम छुपाते हो। अब जीएसटी जब आया ना, तो आपको जब टैक्स क्रेडिट मिला, अब जीएसटी का एक्चुअली समझना चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का बेसिक पॉइंट क्या है। ये जीएसटी पहले जो होते थे इनडायरेक्ट टैक्स, एक्साइज वगैरह, वो पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन पे था। अब जो है पॉइंट ऑफ कंजम्पशन पे टैक्स लगता है, तो मतलब उसके साथ में जो भी टैक्स पे करता रहेगा रास्ते में उनको क्रेडिट मिलेगा
1: जी।
3: तो वो क्रेडिट आपके खर्चे से कम होगा, तो आपका उतना मार्जिन रहेगा, राइट? जो पहले होता था वो टैक्स बढ़ते जाता था, कैस्केडिंग इफेक्ट होता था, जो कंज्यूमर लेवल पे फाइनली आता था बहुत ही इम्पैक्ट ज्यादा होता था। तो एक तो टैक्स का इंसिडेंस और इम्पैक्ट कम हुआ, दूसरा क्योंकि आपने टैक्स क्रेडिट देना शुरू किया तो कंपनीज को इंसेंटिव रहा कि जो इवन छोटे मध्यम वर्ग MSME, आपने जो आंकड़ा दिखाया ना 60 लाख से 1,70,000 करोड़, तो ये इसमें ज्यादातर MSME है। तो इनका भारत में कुछ आई थिंक 65,000 कुछ MSME है, मेरे नंबर एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। तो इनकी जो रजिस्ट्री हुई है ना, इनके कारण बड़ा है, तो इनकी इंसेंटिव रही। पहले ये अवॉइड करते थे सिस्टम में आने से, कैश का जो ट्रांजेक्शन

0: करते थे, तो आपको याद है नोटबंदी में जो मतलब हुआ था 2016 में, तो उसका मुद्दा यही था कि इसके कारण ब्लैक मनी जनरेट होता है। तो इसके जो फायदे है ना, आपने ट्रांसपेरेंट रिजीम बनाया, फिर आपने रेट सेट कर दिया, जो रेगुलेटरी ओवररीच है, पहले एक्साइज इंस्पेक्टर आपके फैक्ट्री के दरवाजे पे पहुंच जाते थे, आज उनको कोई कारण बताना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा अगर वो आपको इन्वेस्टिगेट करेंगे। लेकिन जो इम्पैक्ट, जो एक जो आपने बोला कंप्लायंस, वो एक वॉलंटरी कंप्लायंस रहा है, मतलब उद्योगों में एक इंसेंटिव है कि हम टैक्स कंप्लायंट रहे, हमें कम झमेले हैं, सारा ऑर्गेनाइज्ड है। और इसका एक सब टेक्स्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो ये जो रिसीट्स होते हैं ना, ये पेमेंट रिसीट्स वगैरह जो कैश रिसीवेबल्स होते हैं कंपनी के बुक्स पे, आजकल जो फिनटेक्स आ रहे हैं, जो
1: जी
0: अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क जो आरबीआई ने इसको और लिबरलाइज किया है क्रेडिट पॉलिसी में, इस अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क में आपके जो ये रिसीवेबल्स हैं, इसके बल पर आपको क्रेडिट मिलेगा, आपको
1: जी
0: कोलैटरल मतलब घर फैक्ट्री गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी लोन के लिए।
1: जी
0: तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सबटेक्स है। तो जीएसटी जब हम देखते हैं ना, एक फाइनल पॉइंट ही नहीं देखना चाहिए कि स्ट्रक्चर क्या है, इसके जो फायदे हैं अनेकों फायदे हैं।
1: शुभम भाई, आपके पास आते हैं जो एक कर डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स है, वो एक ऐसी चीज है जिस पर हर नागरिक की नजर होती है जब बजट भी आता है। तो इनकम टैक्स रिफॉर्म्स जो हुई हैं पिछले 12 वर्षों में और हालिया जो रिफॉर्म्स हुई हैं, इनको आप कैसे देखते हैं? जो फेसलेस असेसमेंट है या जिस तरह से इस नई जो कर प्रणाली आई है जो ऑप्शनल थी और जिसमें आपका रेट लोअर है लेकिन एग्जेम्पशंस नहीं है, तो ये जो पूरी जो एक जो बदलाव है उसके क्या क्या पहलू आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं एक सिटीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से?
2: देखिए, इनकम टैक्स आदतन एक टैक्स ऑन लेबर है कि लोग जो परिश्रम करते हैं उसके ऊपर टैक्स है। तो
1: जी
2: निश्चित ही अगर ऐसा टैक्स अगर हो तो इस टैक्स को फर्स्ट ऑफ ऑल इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि लोगों को परिश्रम का जो एफर्ट का जो रिवॉर्ड है वो लगे कि सरकार के पास ही जा रहा है, हमारे पास नहीं आ रहा है। तो पहली बात तो पिछले साल जो वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो बदलाव लाए टैक्स रेट्स में, 12 लाख तक के इनकम को उन्होंने इनकम टैक्स से रियायत दे दी, ये बहुत बड़ा बदलाव है। और
1: जी
2: ये इनकम टैक्स में जनरली बदलाव बहुत जल्दी नहीं किया जाता है, 5 साल 6 4 साल वगैरह के अंतराल में किया जाता है। और लेकिन हर बारी वित्त मंत्रियां थोड़े थोड़े करके इस टैक्स में कुछ कुछ मतलब जैसे कहते हैं लोगों के लिए लुहाने बनाते थे, इन्होंने एक झटके में इसको उठा के 8 लाख से उठा के 12 लाख कर दिए।
1: जी
2: अपने आप में ये बहुत बड़ा एक डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट हो गया कि भाई इतना तक के इनकम 12 लाख भारत जैसे देश में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारे पर कैपिटल इनकम के हिसाब से अगर देखें तो ज्यादातर क्या ओवरवेलमिंग परसेंटेज ऑफ लोग जो इनकम कर रहे हैं सैलरी से मिल रहा है वो 12 लाख के सीमा रेखा के अंदर आ जाते हैं, और बाकी डिडक्शंस वगैरह लेकर और भी उसके ऊपर थोड़ा सा 12,75,000 का पहुंच जाता है। तो ये बहुत ही मूलभूत बदलाव था कि कॉन्फिडेंस इनकम टैक्स पेयर्स के ऊपर।
1: जी
2: दूसरी बात जिसके आपने अपने जो प्रसंग उठाया वो था फेसलेस असेसमेंट। ये फेसलेस असेसमेंट का मतलब क्या है कि भाई इनकम टैक्स आप दे रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो इलेक्ट्रॉनिक बना दिया गया है, और वो ही बहुत बड़ा एक बदलाव था कि धीरे धीरे चलते हुए अभी इनकम टैक्स को किसी जगह पे जाके टैक्स देने का संभावना है ही नहीं, किसी सरकारी कर्मचारी से आपकी मुलाकात होगी ही नहीं, क्योंकि टैक्स आप जो भरेंगे और टैक्स के जो फॉर्म्स आएंगे वो प्री सेट टैक्स फॉर्म्स आ जाएंगे। यानी कि मुझे कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है कि भाई मेरा टैक्स क्या है, कैलकुलेशंस अपने आप में उसी में ही प्री फिल फॉर्म्स में आ जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी सुविधा है कि सोचने का भी जरूरत नहीं है, बैंक अकाउंट देखने की जरूरत नहीं है, कहीं इधर देखने की जरूरत नहीं है, उन सारे जगह से नंबर्स को समेट कर प्री फिल टैक्स फॉर्म आ जाता है, और उसमें कहते हैं कि इतना टैक्स आपका हुआ, अगर आपको सही लगता है तो यस, अगर नहीं हुआ तो फिर आप उसमें बदलाव कीजिए। तो
1: जी
2: ज्यादातर लोगों को ज्यादातर क्या अगेन मैं कहूंगा ऑलमोस्ट 90% ज्यादा लोगों के लिए ये बहुत बड़ी सुविधा है कि सोचने की जरूरत नहीं है, टैक्स फॉर्म पहले से भर के आ रहा है और उनके सैलरी के साथ मैच्ड है, बस अब इसको यस कर दो और आगे चलते बनो। तीसरा चीज जो
1: जी
2: किया गया वो है फेसलेस असेसमेंट, यानी कि बाकी जो लोग जिनको टैक्स में कुछ बदलाव की उन्हें लग रहा है ये जो टैक्स पे करने के लिए मुझे कहा जा रहा है पेमेंट करने के लिए उसमें मेरी कुछ आपत्ति है, तो उसमें भी सबसे बड़ा जो चेंज कर दिया गया है कि ये नहीं कि आप बॉम्बे में बैठे हैं तो आपके बॉम्बे के ही इनकम टैक्स ऑफिसर आपको पकड़ेंगे या आपसे बात करेंगे, वो चला गया है कहीं और उनसे आपकी फिर से जो वार्तालाप होगी वो ट्रेन या प्लेन से आपको जाने की कहीं जरूरत नहीं है, वो दूर में कहीं और पे बैठे हैं, आप यहाँ पे बैठे हैं और उनसे भी आपकी जो डिस्कशन होगी वो पूरी

0: ऑनलाइन, यानी कि जो पूरा टैक्सेशन प्रोसेस है डायरेक्ट टैक्स का वो
1: जी
0: इतना इंपर्सनल कर दिया गया कि लोगों को इस बारे में
1: जी
0: सोच विचार करने की जरूरत ही नहीं है। और इसीलिए आप जब देख रहे हैं, आप जो नंबर का जिक्र किए कि इतना ज्यादा नंबर्स पे लोग टैक्स पे कर रहे हैं, टैक्स फाइलर्स का नंबर आ गया है, वो
1: जी
0: इसीलिए कि ये प्रोसेस इतना ही ऑटोमेटिक बन गया है कि इस प्रोसेस में ज्यादातर लोग शायद याद भी नहीं रखते कि हमने टैक्स रिटर्न फाइल किए हैं। और इससे फायदा क्या हुआ है कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल नागरिक के लिए जिंदगी आसान हो गया है, दूसरा सरकार के लिए भी ट्रैकिंग की इनकम टैक्स आ रहा है, इनकम टैक्स में जो रिटर्न आएगा वो कितना किस परसेंटेज से बढ़ेगा, तो अपने बजटिंग के में ये एक सरकार के लिए एक बहुत बड़ा सुविधा हो जाता है कि उनको पता है कि इतना सारा जितने सारे टैक्स में देने वाले लोग थे, इनके खेमे में आने वाले थे, उन सबको उसमें डायरेक्टली इंक्लूड कर लिया गया है।
1: जी
0: तीसरा चीज जो बहुत बड़ा चीज है वो ये है कि टैक्स रिटर्न होने के वजह से फॉर्मलाइजेशन लोगों के लिए बहुत बड़ा फायदा हो गया है। छोटे छोटे इनकम सैलरीड वाले जो कंपनियां, जो एसएमई वाले इंटरप्राइजेस हैं,
1: जी
0: उनके लिए भी इनकम टैक्स देना, क्योंकि

0: टैक्स में देने वाले लोग थे, इनके खेमे में आने वाले थे, उन सबको उसमें डायरेक्टली इंक्लूड कर लिया गया है।
1: जी
0: तीसरा चीज जो बहुत बड़ा चीज है वो ये है कि टैक्स रिटर्न होने के वजह से फॉर्मलाइजेशन लोगों के लिए बहुत बड़ा फायदा हो गया है। छोटे छोटे इनकम सैलरीड वाले जो कंपनियां, जो एसएमई वाले इंटरप्राइजेस हैं,
1: जी
0: उनके लिए भी इनकम टैक्स देना चूंकि बहुत ही इजी है, इसीलिए लोगों को प्रवृत्ति हो गया है कि अभी इनकम टैक्स और जीएसटी इन सारी चीजों में कोई आपत्ति करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सारे सामने आ जाते हैं।
1: जी
0: अगर हम
1: जी
0: साथ में क्यूआर कोड को, अगर उसके साथ में, अगर हम तीसरा चीज तीसरा पिलर को अगर उसके साथ में लाएं,
1: जी
0: यूपीआई का जो सिस्टम है, तो ये तीनों मिलाकर जो फाइनेंशियल सिस्टम एक इतना बड़ा, एक 1.5 बिलियन लोगों की जो एक इतनी बड़ी तादाद है, इन सब के लिए
1: जी
0: एक जिसे कहते हैं फाइनेंशियल आर्किटेक्चर बन गया है, जिसका संभव क्या, इनफैक्ट मैं पूरे दावे से कह सकता हूँ दुनिया में इसका कोई तुलना ही नहीं है, कि
1: जी
0: इतने बड़े लोगों को इतने कम समय में इतने बड़े फाइनेंशियल नेटवर्क के अंदर शामिल करना, उनके लिए एक आइडेंटिटी देना और साथ में उनके लिए ये भरोसा देना कि ये चीज आपके लिए काम का है।
1: अनिल जी, अगर आपके पास आए, आपको लगता है एक और भी एस्पेक्ट है कि भय मुक्त हो गया है अब, जो करों का जो एक डर होता था वो खत्म हो गया है और ट्रांसपेरेंसी आ गई है पूरे सिस्टम में?
2: हाँ, काफी हद तक सोनू आ गया है, लेकिन जो एक माइंडसेट है जो
1: जी
2: हमारे रेगुलेटर्स में है, वो उसको बदलना बहुत आवश्यक है। वो टाइम लगेगा, अभी वो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग ईरा का अभी भी ट्रॉमा इनके दिमाग में है। तो रेगुलेटरी ओवररीच जो है वो हमें जीएसटी में भी दिखते हैं, मतलब एनेक्डोटली जो दिखता है, इनकम टैक्स में भी दिखता है। तो इसको और भी ट्रांसपेरेंट करना होगा, लेकिन वित्त मंत्री इसके, शी इज अवेयर ऑफ इट। उन्होंने
1: जी
2: हाल में इनफैक्ट कुछ चेंजेस लाने का उन्होंने एक प्रॉमिस किया था, लेकिन पिछले बजट में नहीं लेके आ पाई वो। तो मुझे लगता है अगले बजट में वो ट्रांसपेरेंसी के लिए और चेंजेस लाएंगी, तो डेफिनेटली वो बदलाव तो आया ही है।
1: आइए सुनते हैं जीएसटी पर आधारित ये विशेष रिपोर्ट।
3: जीएसटी लागू होने से पहले देश की अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था कई अलग अलग केंद्रीय और राज्य करों में बंटी हुई थी। एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, सेंट्रल सेल्स टैक्स, एंट्री टैक्स और मनोरंजन कर जैसे कई कर अलग अलग स्तरों पर लगाए जाते थे। राज्यों के बीच टैक्स की दरें और नियम भी अलग थे। इसका असर कारोबार की लागत, सामान की कीमत और देश भर में व्यापार की गति पर पड़ता था। इस व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक थी टैक्स पर टैक्स, यानी एक चरण पर चुकाए गए टैक्स का बोझ अगले चरण की कीमत में शामिल हो जाना। जीएसटी पर काम की शुरुआत वर्ष 2000 में हुई। वर्ष 2006 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने अप्रैल 2010 से जीएसटी लागू करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन राजनीतिक और प्रशासनिक सहमति बनने में कुछ समय लगा। वर्ष 2016 में संविधान के 101वें संशोधन के बाद जीएसटी काउंसिल का गठन हुआ। इसके बाद केंद्र और राज्यों के बीच दरों, नियमों और राजस्व से जुड़े मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श भी हुआ। आखिरकार 1 जुलाई 2017 को जीएसटी देश में लागू हुआ। इस वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट की दिशा में एक ऐतिहासिक सुधार माना गया। जीएसटी ने केंद्र और राज्यों के 17 अलग अलग करों और 13 उपकरों को एक साझा व्यवस्था में शामिल किया। जीएसटी की खासियत यह रही कि इसमें टैक्स का भुगतान केवल उत्पादन या बिक्री के अलग अलग चरणों पर नहीं, बल्कि वस्तु या सेवा की आपूर्ति पर आधारित किया गया। साथ ही इनपुट टैक्स क्रेडिट की व्यवस्था ने कारोबार की अलग अलग कड़ियों में टैक्स के दोहराव को कम करने में मदद की। शुरुआत में नई डिजिटल व्यवस्था को अपनाना कारोबारियों के लिए चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन समय के साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग, ई वे बिल और ई इनवॉइस जैसी व्यवस्थाओं ने टैक्स अनुपालन को अधिक डिजिटल और व्यवस्थित बनाया। इसी बदलाव का असर टैक्स बेस पर भी दिखाई दिया। वर्ष 2017 में जीएसटी के करीब 66.5 लाख करदाता थे। मई 2026 तक इनकी संख्या बढ़कर 1.65 करोड़ हो गई। इसी अवधि में सकल जीएसटी संग्रह 2017-18 के करीब 7.4 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में लगभग 22.27 लाख करोड़ रुपए हो गया। यानी जीएसटी ने केवल टैक्स जमा करने का तरीका नहीं बदला, इसने देश के कारोबार को एक साझा बाजार से जोड़ने, अर्थव्यवस्था को अधिक औपचारिक बनाने और टैक्स अनुपालन को डिजिटल करने की दिशा में भी बड़ा बदलाव किया। आज जीएसटी की व्यवस्था लगातार विकसित हो रही है। दरों में बदलाव से लेकर प्रक्रियाओं के सरलीकरण तक इसका उद्देश्य अब केवल राजस्व जुटाना नहीं, बल्कि कम जटिलता, ज्यादा पारदर्शिता और आसान अनुपालन वाली व्यवस्था तैयार करना है।
1: तो जैसे आप अभी थोड़ी देर पहले भी कह रहे थे कि पॉलिसी जो एनवायरमेंट होता है, इट इज ऑलवेज अ वर्क इन प्रोग्रेस।

0: जैसे जैसे सिचुएशंस इवॉल्व होती हैं तो पॉलिसी को भी इवॉल्व होना होता है, और जैसे कि अभी हमने देखा कि जीएसटी की जो लेटेस्ट मीटिंग, उसमें प्रोसेस रिफॉर्म्स, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, स्लैब्स तो कम हो चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन प्रोसेस रिफॉर्म्स, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, उस पर अभी भी कार्य हो रहा है। एक और जो एरिया है जिसके बारे में हम जानना चाहेंगे, अगर आपके पास है शुभम भोए, फेमा जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रिफॉर्म्स है, फेमा जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, उसमें जो रिफॉर्म्स किए गए हैं ताकि जो बिजनेसेस हैं उनमें एक सुगमता आए व्यापार में, और उस साथ ही साथ सेफगार्ड भी हो, इसको आप कैसे देखते हैं? कई चरणों में ये सरकार ने इन 12 वर्षों में किया है, सो ये आपको कितना इम्पोर्टेंट लगता है ऐसे समय पे जब बहुत ज्यादा क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट जरूरी हो गया है?
1: सोनू जी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में जो बदलाव आया है उसके साथ एक और बदलाव साथ में आया है। इनफैक्ट मैं दो चीजों का जिक्र करूंगा
0: जी।
1: एक आया है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, तो ये एक साथ में एक मूलभूत चेंज, और इसके साथ में FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये तीनों का जिक्र करना जरूरी है क्योंकि तीनों एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं।
0: जी जी,
1: सरकारी मूलतंत्र का ये सिक्वेंस रहा था कि हम इस तरीके से बदलाव लाएंगे कि मोटा मोटी जो भी शख्स नहीं, मैं कहूंगा कंपनी, या फॉरेन एक्सचेंज ला रहे हैं या फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्ट कर रहे हैं तो उनकी जो प्रोसेस होनी चाहिए वो समान तरल होनी चाहिए। यानी कि के पहले, अब देखिए जिसका जिक्र अनिल जी पहले कर रहे थे कि एक पुरानी माइंडसेट की, ये पुरानी माइंडसेट फॉरेन एक्सचेंज के मामले में बहुत ज्यादा था, और हमने बहुत सारे हॉरर स्टोरीज सुने थे कि फॉरेन एक्सचेंज को लेकर कंपनियों में बहुत सारे झमेले, वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के रेड्स, इधर इनफैक्ट स्टेट लेवल में भी इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के बहुत सारे अनुशासन वगैरह वगैरह, इन सब मिलाकर एक अस्त व्यस्त हालत था फॉरेन एक्सचेंज को लेकर। इसमें प्रगति लाने में सरकार ने सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बदलाव जो लाए हैं वो ये है कि सारे कंपनियों को उन्होंने एनकरेज किए हैं कि आप या तो कंपनी यानी कि रजिस्टर ऑफ कंपनीज के तहत आप रजिस्ट्रेशन हो जाइए, और अगर ना भी हो सके तब भी अगर आप सेक्शन 8 कंपनी, जो कंपनीज एक्ट के तहत ही आता है लेकिन वो एक जिसे कहते हैं नॉन प्रॉफिट कंपनी है, कि आपके प्रॉफिट लॉस कुछ का दायरा नहीं है लेकिन आप फिर भी एक कंपनी, तो आपके लिए वही मोटा मोटी रूल्स लागू होंगे जो बड़े कंपनियों के लिए
0: जी।
1: तो इससे फायदा क्या हुआ है कि सबके लिए फॉरेन एक्सचेंज ट्रीटमेंट सिस्टम क्लियर हो गया है, और ये चीज FCRA में भी काफी हद तक पुश किया गया है कि जो कंट्रीब्यूशंस आएंगे फॉरेन एक्सचेंज के, जो फॉरेन एक्सचेंज से जुड़े हुए कामकाज होंगे वो शुड बी अबव बोर्ड, यानी कि वो दिखना चाहिए कि किस लिए किस तरीके से आ रहे हैं। और इसकी जरूरत क्यों है, अगर हम दुनिया की किसी भी बड़े देश को अगर हम देखें इस वक्त, तो एक बहुत बड़ा उथल पुथल चल रहा है, और वो उथल पुथल क्यों चल रहा है, क्योंकि करेंसी दूसरे देशों से आने वाले पैसे, उसके चलते राजनीतिक इम्पैक्ट, दबा दबोच वगैरह बहुत सारी चीजों की प्रक्रिया है, उन सभी चीजों के चलते हुए सारे बड़े बड़े देशों में इस पर निगरानी रखने की नया नया सिस्टम्स जो इनकोऑर्डिनेटेड है उनको लाया गया, और उसको लाने के लिए क्या किया गया है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, अंतर्जातिक एक सिस्टम है, इसमें भारत 2014 में मेंबर बन गया है, और भारत काफी जिसे कहते हैं इलस्ट्रियस मेंबर बन गया है इसका। ये OECD का पहले होता था, सिर्फ ये डेवलप्ड कंट्रीज का एक क्लब था जिसमें भारत पहला नॉन OECD मेंबर है जो इस FATF के मेंबर बने, फुल मेंबर बन गए, और फुल मेंबर होने की वजह से क्या हुआ कि भारत की जो एक उन देशों के बीच में विश्वास आया कि भारत के फॉरेन एक्सचेंज ट्रीटमेंट अंतरराष्ट्रीय बेस्ट प्रैक्टिसेस के अंतर्गत है, ये एक बहुत बड़ी चीज है
0: जी।
1: दूसरा, भारत का जो ट्रीटमेंट है वो दूसरे देशों के लिए, खासकर ग्लोबल साउथ के बाकी सारे देशों के लिए एक तुलनात्मक चीज बन गया है कि इस तरीके से किया जा सकता है। ये चीजें सब मिलाकर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट में जो एक सुधार किया गया है वो सब मिलाकर बन गया है एक इंटीग्रेटेड सिस्टम। अब नेचुरली कि ऐसे इंटीग्रेटेड सिस्टम बनेंगे तो उसमें होता ही है कि कुछ किसी न किसी को इसमें मुश्किलात पहुंचती है, वो लाजम, लेकिन ये जो पूरे जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया की जो ट्रांसपेरेंसी है उस पर कोई दो राय, और इसलिए आप देखेंगे इसके साथ ही एक और चीज किया गया था जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट में बहुत काम में आया, वो है शेल कंपनीज। बहुत सारी कंपनीज हमारे देश में होते थे जो सिर्फ नाम से

0: होते थे और
1: जी
0: एक एक एड्रेस में 200 300 कंपनियों की रजिस्ट्रेशन होती थी। इन सारी कंपनियों का बेसिकली काम था फॉरेन एक्सचेंज को ले आना और लाकर कोई ना कोई गलत काम में इसको इस्तेमाल करना। आपको
1: जी
0: याद होगा ट्रेवल वगैरह में बहुत सारे टाइम में हमने जब इस पर जब बारीकी से जांच हुआ है तो देखा गया है कोई ना कोई शेल कंपनी के थ्रू से ही ये सारे पैसे आए। ये सारे चीज जड़ से उखाड़ने के लिए जो प्रक्रिया किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के थ्रू से और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू से,
1: जी
0: इससे बहुत बड़ा फायदा आया है कि अभी किसी भी सरकारी तंत्र के सिस्टम्स को इस बारे में पता चलता है, पूछ रहती है किस तरीके से उसको निपटा जाए, उस पर वो खबर रख सकते हैं। जी
1: अनिल जी, एक और जो पहलू है, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि विश्वास बना है बिजनेसेस को शामिल करने के लिए, जन विश्वास जो अधिनियम आया है 2023 में, जिसमें डिक्रिमिनलाइज किए गए हैं 183 प्रोविजंस 42 सेंट्रल एक्ट्स में, और उनको क्रिमिनल ऑफेंस से सिविल पेनल्टीज में बदला गया है, जो माइनर और टेक्निकल लैप्सेज है, ये कितना आपको इम्पोर्टेंट लगता है? और जो पुराने लॉज है उनमें लगभग 1500 जो सेंट्रल लॉज थे जो आउटडेटेड थे उनको हटाया गया है, ये भी क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है?
2: बिल्कुल सोनू जी, इनफैक्ट इसको इतनी देर हो गई यही मैं हैरान हूँ। जो ये जो पुराने जो लॉ होते थे, अजीब अजीब किस्म के कानून होते थे जो अंग्रेज बना के गए, तो वो आज तक चलते आ रहे थे। तो उनको जैसे एक एक करके जो इसको हटाने का जो प्लान था, आप जान के हैरान होंगे, ये 1993 का है। जो स्वर्गीय विवेक देबरॉय थे, ये उस टाइम IIFT में थे, इन्होंने एक एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया था और उसमें इन्होंने सारे जो लॉस थे ये जो हटाने हैं, तो 1993-94 में इन्होंने छापा था ये कमिटी का रिपोर्ट। और उसको मतलब ये सरकार जो है मोदी जी की सरकार जब आई, इन्होंने उसको उठाया और फिर उसको जो प्रोसेस रिफॉर्म लेवल पे पुश किया। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक तो जो हमने डिस्कस किया कि जो माइंडसेट है, जो एक मतलब बिजनेसमैन की ओर जो है एक एक अप्रोच है, वो उसमें तो बहुत बड़ा बदलाव आया है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो ये लॉज हैं, अब इनको भी बदलना है। अब जैसे मैंने पहले थोड़ी देर पहले कहा कि रेगुलेटरी ओवररीच, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है जो ये ना भारत सरकार ना स्टेट लेवल सरकार इसका कोई मसले का हल तुरंत ढूंढ पा रहे हैं। इस पे कोशिश तो जरूर जारी है, लेकिन इस पे और भी मेहनत करना है, क्योंकि हमारे जो ये उद्योगपति हैं खास करके मध्यम वर्ग में, इनको जो रेगुलेटरी जो हरासमेंट होता है इसके कारण फ्रिक्शन बढ़ता है। जब फ्रिक्शन बढ़ता है इकोनॉमी में प्रोडक्टिविटी नहीं होता है, मतलब तो ग्रोथ नहीं होता है।
1: जी
2: तो इसको हटाना एक बहुत बड़ा प्रायोरिटी, नेशनल प्रायोरिटी बनाना चाहिए।
1: जी तो शुभमय, जो अभी अनिल जी कह रहे थे कि कांस्टेंट सिंप्लीफिकेशन प्रोसेसेस की रेगुलेटरी रिफॉर्म्स के थ्रू, जिसके बारे में सरकार भी पूरी तरह प्रयासरत है, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस की हम बात सुनते हैं, और डिजिटलाइजेशन से अलग अलग जो बिजनेस एस्पेक्ट्स हैं, GST की तो हमने बात करी ही, आपको परमिट्स मिलने हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, क्रेडिट जो मिलता है ये टेक्नोलॉजी की वजह से जो उसमें ईज आई है, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आपको लगते हैं ओवरऑल जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसको बेहतर करने के लिए?
0: बिल्कुल सोनू जी, और इसमें अगर आप देखें कि अभी जो डिबेट चल रहा है एमडीआर चार्जेस को लेकर यूपीआई में, अगर आप इसको देखें तो ये बड़ी दिलचस्प चीज है। वो क्यों? क्योंकि एक समय था जब लोग कैश से ही कोई ट्रांजैक्शन करना नॉर्मल मानते थे, उसी में ही चलते थे।
1: जी
0: आज भारत की इतनी बड़ी जनता का तादाद यूपीआई के बनाए हुए
1: जी
0: QR कोड के ऊपर इतने डिपेंडेंट हो गए हैं कि उनको अभी लगता है कि ये चीज हट जाएगा तो हमारे लिए हम फिर से वापस पहुंच जाएंगे कहीं, और वो पहुंचना नहीं चाहते। ये एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं माइंडसेट का बदलाव है। अगर हम इसको
1: जी
0: देखें तो
1: जी
0: ये अविश्वसनीय है कि किस तरीके से लोग एक मतलब लोग का कहना है कि ये एक रिफॉर्म है और इस रिफॉर्म हम अपना चुके हैं, इस पर हम बिल्कुल इसमें हम लीन हो गए हैं और हम इस पे ही टिकना चाहते हैं।

0: एमडीआर चार्ज होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो अलग बात है, वो
1: जी
0: उसके ऊपर तर्क हो सकता है, लेकिन एक इतना बड़ा चेंज कि जो गरीब से और इस चेंज इसलिए मूलभूत है कि गरीब से गरीब आदमी भी कहता है कि नहीं, हम सबसे बड़ा ये जरा देखिएगा कि कहीं हमको इससे हटना पड़े, इससे हम
1: जी
0: हटना जाए।
1: जी
0: तो ये एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आप कह रहे हैं जो इज ऑफ डूइंग बिजनेस में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है, वो इसका एक जिसे कहते हैं एक बहुत बड़ा मिसाल है। और इसमें सिर्फ क्यूआर कोड नहीं, अगर आप इसके नीचे देखें तो इसमें इंक्लूडेड है बैंक अकाउंट, यानी कि देश के सारी जनता एडल्ट जो है सबके पास बैंक अकाउंट है। अगर हम इसके नीचे जाए तो देखेंगे कि इसके नीचे सबके आधार का जो श्रृंखला है वो है। तो कुल मिलाकर ये एक फाइनेंशियल सिस्टम को बदल देने का इतना बड़ा एक जिसे कहते हैं एक एक ठिकाना है, एक सिस्टम है, जिसको जिसका फिर से मैं वही कहूंगा कि इसका फ्रेंकली कोई कंपैरिजन नहीं है दुनिया में।
1: जी
0: और ये चीज साथ में अगर आप देखें बाकी सारे चीजों में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी, बाकी क्षेत्रों में भी इसी का ही जोर है, इसी का ही आवाज है कि भाई हमें भी इसी तरह का सुविधा चाहिए कि
1: जी
0: अगर इनकम टैक्स आराम से भर सकते हैं, अगर हम जीएसटी में कोई झमेला नहीं होता है, अगर पेमेंट प्रक्रिया अगर सुचारू ढंग से चलता है, जिस पर हमें सोचने की जरूरत नहीं है। तो आपको याद होगा कि जैसे एक टाइम था कि स्मॉल कंपनीज को जब अपना कैश लेकर जाते थे बैंकों में, तो आए दिन खबर आती थी कि फलाने के जगह पे डाका लग गया है, यहाँ पे कुछ वो पैसे लूट पाट हो गया है। अब वो सारे खबरें जिसे कहते हैं इतिहास बन चुका
1: जी
0: है,
1: जी
0: क्योंकि
1: जी
0: वो पैसे लेकर जाते नहीं है,
1: बिल्कुल
0: वो जरूरत नहीं होती है।
1: बहुत
0: तो ये चीजें जो गांव दूर दूर के गांव तक में भी ये इसका प्रक्रिया इतना बड़ा बन चुका है कि वहां पर तो खासकर इस चीज को लेकर ही लोग चलते हैं कि भाई पैसे लेकर कौन चलेगा।
1: जी
0: तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की एक बहुत बड़ी जिसे कहते हैं स्तंभ है। अगर हम इसको अगर आगे देखें कि ये किस तरीके से बिजनेस को बदल रहा है, तो बिजनेस चलाने में जो परमिट्स हैं और जो प्रोसेसेस हैं वो सारे फिर इसी से ही जुड़े हुए बन गए हैं कि वो बन किसी बिजनेस को किसी चीज परमिट मिलने में काफी आसानी हो गई है। और हाँ, मैं ये जरूर मानूंगा कि अभी भी बहुत सारी जगह पे और वो शायद हमारी एक गलत हमारी जो तरीका है कि हम फूड क्वालिटी कैसे रख रहे हैं, उसमें क्या चीज किस तरीके से क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, उस पर जरूर निगरानी होनी चाहिए, उस पर
1: जी
0: लोगों को भरोसा आना चाहिए। लेकिन अगर आप देखें कि एक कंपनी जिनके नाम हमारे मुंह से एकदम जस बच्चा बच्चा भी यार बोल देता है, ये सारे कंपनियों का हम कल्पना ही नहीं कर सकते थे अगर इस तरह का पेमेंट सिस्टम नहीं आ सकता। और इससे आज जुड़े हुए जो
1: जी
0: गिग इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, उससे जुड़े हुए इतने मिलियंस की जो नौकरी है, ये पूरा ये सोच में भी नहीं आ सकता था अगर ये फाइनेंशियल आर्किटेक्चर का बंदोबस्त अगर नहीं तैयार होता।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका शुभमोय अनिल, आप शामिल हुए इस कार्यक्रम में, जन सेवा से देश सेवा, और आपने इतनी बारीकी से हमें समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद।
2: धन्यवाद सोनू जी।
3: विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 25वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा आर्थिक सुधार एक नई व्यवस्था की ओर। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी और अनिल पद्मनाभन। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNSDTalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। भारत की प्रगति को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और वैज्ञानिक उपलब्धियों से प्रेरित बताया। प्रधानमंत्री ने कहा, देश युवाओं को अपार अवसर प्रदान कर रहा है। देश के विकास के लिए युवाओं से अपनी क्षमताएं पहचानने का आग्रह किया। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारियों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल लोगों की अवैध हिरासत रोकने और सुचारू यातायात जारी रखने के निर्देश दिए। भारत ने नई दिल्ली में हुई घटनाओं पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की टिप्पणियां खारिज की। इसे दोहरा मापदंड और अपने आंतरिक मामलों में

0: उचित हस्तक्षेप बताया। नेपाल की बूढ़ी गंडकी नदी में अचानक बाढ़ से गोरखा जिला प्रभावित, अब तक 80 लोगों को बचाया गया और 5 लापता। काहिरा में निशानेबाजी विश्व कप में उदयवीर सिद्धू ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से संपर्क सुविधा बेहतर होगी, उद्योग और व्यापार मजबूत होंगे तथा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने कहा कि ये परियोजनाएं दैनिक यात्रा आसान बनाएंगी और राज्य की आर्थिक वृद्धि में मदद करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में परंपरा और आधुनिक विकास साथ साथ जारी हैं।
1: मंदिर से मेट्रो तक तमिलनाडु के ये अनुभव, यही आज के भारत की स्पिरिट है। भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति से प्रेरणा लेता है, विज्ञान की प्रगति से आगे बढ़ता है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। हमारी विरासत और भविष्य की हमारी आकांक्षाएं साथ साथ आगे बढ़ रही है।
0: इससे पहले श्री मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के पूर्णमल्ली वड़ा पलानी खंड का शुभारंभ किया। चेन्नई में एक अन्य समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया उभरती हुई चुनौतियों का समाधान तलाश रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के युवाओं में ये समाधान देने की प्रतिभा और क्षमता है। श्री मोदी ने कहा कि युवा विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
1: विकसित भारत के लिए जो नए आइडियाज चाहिए, जो नए सॉल्यूशंस चाहिए, उनसे भारत ही नहीं विश्व का भविष्य भी तय होगा। टुडे द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस एंड यू हैव द पोटेंशियल टू प्रोवाइड दिस दोज सॉल्यूशंस।
0: प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की।
1: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखे, बिकॉज दिस इज योर टाइम, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार से युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा भारत को खेलों के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।
1: भारत 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की तैयारी कर रहा है। हम 2036 ओलंपिक्स की मेजबानी का सपना भी लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले वर्षों में जब दुनिया के बड़े स्पोर्ट्स इवेंट भारत में होंगे, इसलिए भारत के युवाओं के पास अब प्लेटफॉर्म भी है, पोटेंशियल भी है और सपोर्ट भी है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए लोगों को अवैध हिरासत में नहीं लेने और यातायात सुचारू तरीके से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने दिल्ली में बैरिकेडिंग व्यवस्था की समीक्षा करने, मेट्रो सेवाएं समय सारणी के अनुसार और इंटरनेट सेवा निर्बाध रूप से जारी रखने को कहा। न्यायालय ने कहा कि वकीलों के पेशेवर दायित्वों के निर्वहन में बाधा नहीं डाली जानी चाहिए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के दोहरे रवैये और सार्वजनिक मामलों पर चुनिंदा तरीके से प्रतिक्रिया देने के तरीके की आलोचना की है। भारत ने नई दिल्ली में कल की घटनाओं पर संगठन की टिप्पणियां खारिज कर दीं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संगठन की टिप्पणियों को गैर जरूरी और देश के आंतरिक मामलों में अस्वीकार दखलअंदाजी बताया। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत के पड़ोस में विरोध प्रदर्शनों पर हिंसक प्रतिक्रियाओं पर कोई टिप्पणी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि इस तरह के दोहरे रवैये से संगठन की विश्वसनीयता घटती है। श्री जायसवाल

0: ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है।
1: We have seen certain remarks.
2: हमने कल की घटनाओं के बारे में मानवाधिकार उच्च आयुक्त के कार्यालय की कुछ टिप्पणियों को देखा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहां शांतिपूर्ण सभा करने के अधिकार की गारंटी संविधान में दी गई है। हमारे मजबूत संस्थान, स्वतंत्र न्यायपालिका और मीडिया इस अधिकार को सुरक्षित रखते हैं। हर लोकतंत्र की तरह भारतीय नागरिक सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस अधिकार का प्रयोग करते हैं।
0: भारतीय जनता पार्टी ने सांसद और प्रोफेसर बिमोल अकोइजम के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर कांग्रेस की आलोचना की है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद बिमोल अकोइजम की सेवाएं समाप्त कर दी थीं। नई दिल्ली में पार्टी सांसद बांसुरी स्वराज ने कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी पर सवाल उठाए।
3: जेएनयू ने पॉश एक्ट के तहत एक इंटरनल कमिटी बिठाई। इस कमिटी ने तमाम सबूतों, तमाम विटनेसेस और तमाम सर्वाइवर्स की विटनेस टेस्टिमनी के बाद, सारे के सारे तथ्यों की जांच करने के बाद तुरंत बिमोल अकोइजम को नौकरी से बर्खास्त किया। फेमिनिज्म कांग्रेस पार्टी के लिए केवल एक हैशटैग से शुरू होता है और जवाबदेही की दहलीज पर आकर समाप्त हो जाता है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन सेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जन सेवा से देश सेवा इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टिकोण के साथ भारत सरकार को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। आज विशेष श्रृंखला में बात औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति के लिए की जा रही पहल की।
4: पिछले कुछ वर्षों में सरकार धीरे धीरे भारत से ब्रिटिश शासन की निशानियों को हटाने की दिशा में काम कर रही है। 15 अगस्त 2022 को 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 25 वर्षों के लिए 5 संकल्पों यानी पंच प्रण की घोषणा की थी। दूसरे प्रण के बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि नागरिकों के जीवन के किसी भी हिस्से में, यहाँ तक कि उनके मन के सबसे गहरे कोने या उनकी आदतों में भी गुलामी का कोई अंश नहीं होना चाहिए।
5: सैकड़ों साल की गुलामी ने जहाँ हमें जकड़ कर रखा है, हमारे मनोभाव को बांध करके रखा हुआ है, हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी है। हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी।
4: देश को उपनिवेशिक विरासत से मुक्त करने और एक अलग भारतीय पहचान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई क्षेत्रों में कई कदम उठाए हैं। नई दिल्ली के ऐतिहासिक राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। भारतीय नौसेना ने पुराने ध्वज जिसमें सेंट जॉर्ज क्रॉस बना हुआ था की जगह वर्ष 2022 में अपना नया ध्वज अपनाया। सरकार ने वर्ष 2017-18 से रेल बजट को आम बजट में मिला दिया। इसके साथ ही वर्ष 1924 से चली आ रही एक परंपरा समाप्त हो गई। बीजेपी नेता राम माधव ने कहा,
6: वी लिव्ड एज अ नेशन, हम कम से कम 5000 वर्षों से एक राष्ट्र के रूप में जी रहे हैं। इतने लंबे इतिहास में हमने एक महान राष्ट्र, महान इतिहास, महान स्मारक, महान ऐतिहासिक स्थल बनाए हैं। वे सहस्त्राब्दियों से भारत की पहचान रही है। महान पहचान आज यही हो रहा है, यही वह है जिसे हम औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति कहते हैं।
7: डीकॉलोनाइजेशन,
4: सरकार ने ब्रिटिश शासन के दौरान प्रतिबंधित साहित्य को फिर से सामने लाने का भी प्रयास किया है। इसके तहत भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रतिबंधित कविताओं, लेखों और प्रकाशनों की एक सूची तैयार कर रहा है। ये सभी पहल एक ऐसे आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है जो अपनी सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय मूल्यों पर आधारित है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। 9 दिवसीय शारदीय नवरात्र उत्सव आज पूरे देश में धार्मिक उत्साह और भक्तिभाव के साथ शुरू हो गया।

देवी दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रमुख मंदिरों में पहुंच रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पावन अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा लोगों को आत्मानुशासन

और नैतिक मूल्य स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती है। ये महोत्सव नारी के सामर्थ्य, साहस और दृढ़ता में विश्वास को मजबूत करता है। भारत में त्योहारी खरीदारी सीजन की शुरुआत जोरदार रही। एक रिपोर्ट के अनुसार देश के प्रमुख ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने फेस्टिव सीजन में पहले दो दिनों में करीब 24,000 करोड़ रुपए की बिक्री की है। इस दौरान लोगों ने स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू उपकरणों और फैशन उत्पादों की जमकर खरीदारी की। त्योहारी सीजन के पहले दो दिन की बिक्री सामान्य दिनों की तुलना में लगभग 6 गुना अधिक है। नेपाल के गोरखा जिले में बूढ़ी गंडकी नदी में अचानक बाढ़ के बाद अब तक 9 विदेशी नागरिकों सहित 80 से अधिक लोगों को बचा लिया गया है। 5 लोग अब भी लापता हैं। आज सवेरे लगभग 4 बजे आई बाढ़ में घर और पुल बह गए और कई जल विद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बिगड़ती कानून व्यवस्था के कारण आपातकाल घोषित कर दिया है। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने प्रांत में संवैधानिक व्यवस्था के विफल होने पर आपातकाल लागू किया। इस कदम से पाकिस्तान की संघीय सरकार को मुख्य कार्यकारी और विधायी शक्तियां अपने हाथ में लेने का अधिकार मिल गया। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन ऊर्जा केंद्रों पर हमले रोकने के लिए सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि युद्ध विराम तत्काल प्रभाव से लागू होगा। उन्होंने दोनों देशों से समझौते का पालन करने का आग्रह किया। इस बीच रूस और यूक्रेन दोनों ने ही युद्ध विराम पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है। सऊदी अरब के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुती विद्रोहियों के हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और 309 अन्य घायल हुए। भारत ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि लोगों और असैन्य ढांचे पर हमले अस्वीकार हैं और इन्हें तत्काल रोका जाना चाहिए। इस बीच विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि रियाद में भारतीय दूतावास घायल 11 भारतीयों की मदद के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहा है। दूतावास उनकी सहायता के लिए स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है। मिस्र में निशानेबाजी विश्व कप में उदयवीर सिद्धू ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में 240.6 अंक के साथ अपना पहला सीनियर विश्व खिताब जीता। अनमोल खरब ने तुर्की इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। अनमोल ने फाइनल में आकर्षी कश्यप को हराया। इंदौर में भारत ने वेस्टइंडीज को तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 224 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 10 विकेट पर 223 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने सर्वाधिक 69 रन बनाए। 5 मैच की श्रृंखला में दोनों टीम 1-1 की बराबरी पर हैं। मौसम विभाग ने कल हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में बिजली चमकने के साथ बरसात होने और तेज हवा चलने का अनुमान व्यक्त किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। भारत की प्रगति को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और वैज्ञानिक उपलब्धियों से प्रेरित बताया। प्रधानमंत्री ने कहा, देश युवाओं को अपार अवसर प्रदान कर रहा है। देश के विकास के लिए युवाओं से अपनी क्षमताएं पहचानने का आग्रह किया। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारियों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल लोगों की अवैध हिरासत रोकने और सुचारू यातायात जारी रखने के निर्देश दिए। भारत ने नई दिल्ली में हुई घटनाओं पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की टिप्पणियां खारिज की। इसे दोहरा मापदंड और अपने आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप बताया। और काहिरा में निशानेबाजी विश्व कप में उदयवीर सिद्धू ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: सबसे अलग। मेरी बात सुनते हो, यू रियली लिसन। काश मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा होता। Am I making sense?
1: Not at all. But that'll be 3,000 rupees, please.